0: हंगार
1: अंगार दो मिंदुल कोरी एकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मिंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकने दिवे राज्य क्याडूं
3: मुदर रिसे के अडूं
4: ती मूसा गफानो मिस्रंग एम्परी वड़ा गतो मूसा गफानो मिस्रंग एम्परी वड़ा
3: दारिवारुंगे सवाल तक आए को
5: फुरतमा एरी बोटका नें ऐसोले हो एकले गफानो
3: इब्रतुम फुरिगेम्बा वाहक तक आए को दिवेराज्य गड़ुंगे निस्तेनी
6: फानोस कौम में हो कर दो है कि हावीर हाथरु के डिफाइनर हैं रिपीट कौम में आंगार दो है कि हावीर हाथरु के डिफाइनर हैं
3: इंहा सतरस्ते के 6.5 किलोहर्ट्स मीडियम वेव आदि 8.5 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड दिवे ही राज्य के आड़ो
7: एहारा मिहारु के फिल्म तो के हिक्के मंजर तका लवतो के तेरिया फीना लमा
8: ए बलम हीरा लतीफा कौन ताका गोत्सत ती अन्ननी ए
9: बेवानी की हिने बा

0: मुन्ना को बाकी ही ना के देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कौन वड़ा में के दक काफ़ूं अता
2: मुन्ना थी है बुरको वेंडना हिंका में ने अफन थी कं कोलन ना
1: तिको तुम हाउ दा ही रंगल लाए तिहं मुन्ना एक ही आहो हाल बला फे मुन्ना रकां कं को देन्ना है दी मुन्ना वरहा उपावे

0: Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Mia tu ke spill the tea program ay kumi badal kholle arne Yuin.
1: Adi aid.
0: Adugan ke nama ki Mariam Yuin Malik adugan thalim hasil kureni miharo miwago tu Vila International High School grade 11 senior 11 ga ane A student ke gato ga.
1: Adugan nama ki Muhammad Aid Ismail agar thalim hasil kureni Maldives Business School ga accounting and finance.
0: Aid ko ba halu rangalo ta.
1: Na rangalo. ये हाल की है ना
0: नागरों हम मैं अब तक स्पेल्डेटी प्रोग्राम का अड़ोगन में वाह कदक करने जिम्मा नेगुमा बहेगो तुम आई तो जिम्मा नेगुमे बनी मुकिन तारण
1: हम अड़ोगन देरी उन्होंने मुंगा ये कोरा कांतत्त का दब निविष्णानी साला का अड़ोगन एक्शन को फिया में एक्शन के कंसेक्वेंस है गोता
0: आमिल ला कंकमुगा जिम्मा नगंग मिहिंगानी हिंग हादान को देन खालो
1: Azawaki therapy center ga maske kura license provisional psychologist
0: spill the tea program ga mikhalwa ka dakkalam badal kholle ti azumi sawar bada shukriya azumi sal rangalo to
2: mara rang kine ti gudi
1: rangalo
0: hemi mhinga do mikama mashwara kholla zimma ne gumuge muhimmu kan alugon men tan kole khiala de vidan to zimma ne gumaki ko ba ka maslo
1: psychology ga kine to zimma ne gum describe kore vidan
0: zimma adakuran masekke kuran bernum va kujjaka

0: सामी करा दंडे गुणाने
1: मी खरा मूस में नो नो ने मी
0: हाँ मूस उन्ने तस दंडो अन्ना ने नु दंडो अवे एली म गुलाती समय इंगे हाँ कौन से
1: रोध में तो करा आम कुंड बैन में तो गो आम कुंड बैन तो
0: ऐ हम वनी रोध में हाथ दाव लें दो हम करा
1: बावर करो सोचो रोध में आज लग उन्ना ने बावर करा बावर बावर उन्ना
0: सामी म कह रही है दाकर नो मिजे होनी
1: वर
0: गिने देते हेण अड़के कुदी ना यहाँ रट्टे ही नुम्बी में ने एंगे नी दाका में मिहार दे सामागोसी आएंगे ने क्या मुस अलग दो ती गुड़ी वेस मुड़ी ना ला अड़के प्रोग्राम में गस्ती बैवर भी आला
1: मेरे को नी रामीज बच्चे का दादू को लग बदल रामीज बच्चे का देंगे नवंबर बदले
0: हाँ रामीज आए कहने बदल भी देंगे ना तेरा रख कुछ कुछ दे समी माइंगे ने अनेक काने वाह कहती
1: बुने मैं कल हर वक्त बुने मैं
0: पूरे पूरे तेरा शक दा कुछ कह रहे बुना न था अल फीलिंग गोवाशे समी मा समी मा
1: ना तेरे ना कहीं तेरा फोन लगा दख कर तोड़ दो अन्न माल दो कब तोड़ दो अन्न मी
0: वर कह रही है नून
1: बुनाकाने ये मुझे हो रहा है कुछ कुछ दिलना हो रहा है कुछ दिलना वो क्या मज़े करना
0: आ मस्त है ना
1: अभी वक़्त समाज रट्टे ही रट्टे ही
0: आ रट्टे ही हाँ मैं समाज के फरातुन समी माय बोलो रट्टे सा ओके एहम भी मतलब जहाँ देना वरंग फावर बाज़ वेरिया कहेंगे दें वेदुमा सलाम वक़्त वेदन

0: अहंकार।
1: मी दिवे राज्य एक आडू के उफेद में
2: दिवे हींगे अमील लवंत कंग खुरी हरुवादे
3: दिवे हींगे उफेद दुन तेरिकंग दक्वादे
2: दिवे हींगे माजी गे मंजर ता सिफ़कोदे
3: दिवे हींगे आडू
2: दिवे हिराज्य गे आडू
3: එංහා 47.40 kHz medium wave
2: අඩි 90 MHz FM band

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुन करी एकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे ही राज्य चाडूं
3: दिवे ही इंगे अमील लवंत कंग खुरी अरु आदे
4: दिवे ही इंगे उफेद्दुन तेरी कंग दक्कु आदे
3: दिवे ही इंगे माजी गे मंजर ता सिफ़ा कोद्दे
4: दिवे ही इंगे अडु
3: दिवे ही राज्य गे अडु
4: एंहा सतर्स्ते का सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव
3: अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
5: ගණින් මෙන්දම ගලවේ තිංගඩි 30 මිනිත් අසෝමිතේ ගෙන් දොනි තිවිහිරාච්චේ ගඩෝ